0: पानी पानी
1: इमेज खराब काम गलत न्यूज में नाम आता हर वीक फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख हाथ पकड़ पर दिल न लगा जो कहती है करके दिखा सुनने में आया है तुम मरती है हम पे मर के दिखा रहने दे मुंह बंद रख आंखें जो कहती हैं कहने दे बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे शुभ बादशाह।